याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाद्य अनंत दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राणय उबगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थाने अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सीकरनो तुमीगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्त मरनेन गलवेम सलसो मेनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: खाती हला हेतलियानी हम आला तले मेने ई खाती हाले हम आला तले आले खाती हला हे के तिरिया मेना बाले वेले लो असुते बाला खडरावा लिबा हे मेने ले थे बा खातीदा ले सोए नवतले दिन असुते बाला येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: देखे रामा खातीदा रे तेरे बे
0: ई हमला के तियाले हमा तेरे
1: बे दे दे रवा खातीदा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेलिया मेले मातिलिया ले

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कन्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: श्रीदेवा
1: इसे स्वामिनी ओब सबिनम सुशुद्धे सिल सुशुद्धतावे उल्पत बोहन से में यही नोहन से गे आत्मेनन गे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवत करण में नपियादि अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन मनि येशुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीरय श्री रुधिरय बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरणेट सिय कैमेत्तेन पवरादी मिट पेर